मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और 104 एफएम मेगा हर्ज पर ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। आज सन 2026 सितंबर महीने की 21 तारीख व दिन है सोमवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायिका श्रीमती संगीत सोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अश्युत बर्मन और श्री हेमंता स्वर्गरी, मनपा में उद्घोषक श्री थुतन ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका यशी पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का तवान केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज दोपहर 2 बजे तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: the bronze with 230.9. Earlier, India had also won the silver medal in the men's 10-meter air rifle team events. In mixed martial arts, Suchikata Riyal bagged the bronze medal after losing 0-2 to Singapore's Hui Hoon Choi in the women's 60-kilogram traditional semi-final. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. According to IMD, similar weather conditions are also likely to prevail over coastal Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka and Madhya Maharashtra during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-New Zealand free trade agreement finalized comes into force on 20th October, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Union Minister Anupriya Patel says Indian pharmacopoeia gains recognition in 25 countries, reflecting the country's remarkable journey of self-reliance. Releases 7th edition of National Formulary in New Delhi. BJP says Congress is deeply influenced by communist ideology, condemns former Vice President Hamid Ansari's remarks. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to lead Indian delegation at 81st session of UNGA in New York. Russia's ruling United Russia Party takes lead in parliamentary election. IMD forecasts heavy rainfall over Andaman and Nicobar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. And Indian shooters win 3 medals in men's 10-meter air rifle, taking total tally to 6 at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए

0: फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
1: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
2: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल के तक की जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों टेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमा सानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस किला पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नबीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
5: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है। हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने

0: उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। दो दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज वो चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
1: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
2: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र

0: प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:10 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्तिगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनिए अनुप जलोटा के स्वर में चंद्रदेव भक्ति गीत।

श्रोताओं, अनुप जलौटा के इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं संगम लिंगी और ऑटोजी मैलू की आवाजों में चनादोनी मिशमी गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विभिन्न प्रण का कार्यक्रम विदेशी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं दोजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के छात्र सुखशी तेंजिन थोमू से एक वार्ता। वार्ता का विषय है जीवन में अनुशासन का महत्व।
1: आकाशवाणी तवंग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी नमस्कार। मेरा नाम तेंजिन थोमू है। मैं दोजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवंग में 5वीं सत्र की छात्र हूँ और आज जीवन में अनुशासन का महत्व पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूंगी। अनुशासन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। अनुशासन का अर्थ है सही समय पर सही कार्य करना, नियमों का पालन करना और अपने व्यवहार आदतों को निरंतर रखना। यह केवल दूसरों के बने नियमों को मानना नहीं है बल्कि स्वयं को सही दिशा में चलाने की कला है। आज के समय में जहां हर जगह आकर्षण और विचलन मौजूद है, वहां अनुशासन की अवस्था और भी अधिक बन जाती है। सबसे पहले अनुशासन व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाता है। एक अनुशासित व्यक्ति सोच समझकर नियम लेता है और भावनाओं को प्रलोभनाओं के कारण गलत कार्य नहीं करता। जैसे कि एक अनुशासन छात्र समय पर उठता है, नियमित रूप से स्कूल जाता है, रोज पढ़ाई करता है और अपने कार्य समय पर पूरा करता है। धीरे धीरे यह आदत उनके अंदर ईमानदारी, समय के पाबंदी, जिम्मेदारी और मेहनत जैसे अच्छे गुण विकसित करती है। अनुशासन का दूसरा बड़ा महत्व यह है कि यह हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, बिना अनुशासन के प्रतिभा बेकार हो जाती है। बड़ी उपलब्धियां सफल वही लोग होते हैं जो अनुशासन होते हैं। वे एक योजना बनाता है, उस पर रोज काम करता है और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। अनुशासन उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने की शक्ति देता है। छात्र जीवन में अनुशासन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अनुशासित छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, अपना ग्रह कार्य समय पर पूरा करते हैं और परीक्षा की तैयारी नियमित रूप से करते हैं। उन्हें समय का मूल समझ में आता है और वे अनावश्यकता कार्य में बर्बाद नहीं करते। अनुशासन छात्र के व्यवहार को भी सुधारता है। वे शिक्षकों का सम्मान करता है, स्कूल के नियमों को पालन करता है और सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। इसके शिक्षा के वातावरण शांत और सकारात्मक बनता है। व्यक्तिगत जीवन में भी अनुशासित व्यक्ति हमेशा स्वस्थ आदतों का पालन करता है, जैसे समय पर उठना, समय पर सोना और खान पान, नियमित व्यायाम और साफ सफाई बनाए रखना। ये आदतों हमें तनाव और बीमारी से दूर रखते हैं। एक अनुशासित परिवार हमेशा शांतिपूर्ण और एकजुट होता है। इसीलिए अनुशासन केवल व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इसी के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।

0: अभी आपने कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत दोजी खंडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के छात्र तेंजिन सोमु से एक वार्ता सुना। वार्ता का विषय था जीवन में अनुशासन का महत्व।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से श्रेया घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर की आवाजों में। इस गीत को बोल दिए है अन्विता दत्त ने तथा संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

सानन किरकिरे के गीत पर यशोदा ने अपनी फिल्म गुड बाय से अमित त्रिवेदी की आवाज में एक गीत का आनंद लिया। आइए कार्यक्रम का

ये सुनते हैं फिल्म सम्राट पृथ्वीराज से सुनिधि चौहान के आवाज में। इस गीत के रचयिता वरुण ग्रोवर तथा संगीत दिया है शंकर एहसान लोई ने।

0: श्रोता, अभी आपने महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत में चंद फिल्मी गीतों का आनंद लिया। इसी के साथ अब यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
1: किधर है?
2: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट,
1: ये तो झटपट काम है।
2: कैसे?
1: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
2: और बाकी चेंजेस
1: घर बैठे वीडियो केवाईसी या

0: आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से, ये नूडल्स बनाने जितना आसान है। आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: मेरे में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और 104 FM MHz पर ये आकाशवाणी का तारा केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 होने वाले हैं। लीजिए श्रोता, पेश है आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म जब तक है जान से, हर्षदीप कौर की आवाज़ में। इस गीत को बोल दिया है गुलजार ने तथा संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

कुमार के रचे बोल पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म तुम मिले से नीरज श्रीधर की आवाज में।

अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया की स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स OTT पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।

प्रीतम के संगीत पर श्रोताओं अपने फिल्म क्रुक्स से निखिल डिसोजा की आवाज में ये सुना। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, जुबिन नौटियाल की आवाज में फिल्म टैंगो से। इस गीत को लिखा है रश्मि विराग ने तथा संगीत दिया है तनिष्क बग्ची ने।

हर झिल्ली की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स ओटीटी इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।

इरशाद कामिल के गीत पर श्रोता अभी अपने फिल्म जब भी मेर से मोहित चौहान की आवाज में एक ही सुना। श्रोता अभी आप हमें आना ले रहे आकाशवाणी के तवांग केंद्र से मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ट्ज पर। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म मनमर्जिया से अमी विर्क और शाहिद मलिक की आवाजों में। इस गीत को लिखा है शैली ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

0: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1 to 3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वेव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वेव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 August से 31st August 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: कार्यक्रम में अगले गीत आइए सुनते हैं AR रमन के संगीत पर फिल्म एक दीवाना था से लियोन डिसूजा और सुजन डिमेलो की आवाजों में।

लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागरंग। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के स्वर में हिमसत्वनी राग।

श्रोता, अभी आप सुने थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के स्वर में हिमसत्वनी राग। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार 4:45 पर तथा 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाले इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। अरुणाचल प्रदेश के शहरी कार्य, भूमि प्रबंधन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री बाला राजा ने आनी डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में शहरी विकास और भूमि प्रबंधन विभागों की समीक्षा बैठक में भाग लिया। अधीक्षक पुलिस, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं जॉन पावा ने आगामी शीत ऋतु को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश के सभी अग्निशमन केंद्रों के प्रभारी अधिकारियों को 2400 घंटे परिचालन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। तवांग विधायक नांगे सेरिंग ने सॉल्ट ट्रैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, यह ऐतिहासिक पहल युवा पीढ़ी को अपने पूर्वजों के संघर्ष, दृढ़ता और ज्ञान से फिर से जोड़ती है। स्वदेशी आस्था के स्वयंसेवकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला राजधानी ईटानगर के जोलंग स्थित आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में शुरू। अरुणाचल प्रदेश के वुशु खिलाड़ी यमान वांगसु ने आज जापान में आयोजित 2026 एशियाई खेलों में महिला सांगचुओन में फाइनल मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार मुक्त समझौता FTA 20 अक्टूबर के दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा है कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाली 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेंगे। यह समझौता सेवाओं, निवेशों और पेशेवरों, विद्यार्थी एवं युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध है जो मजबूत जन संसाधनों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत है।
3: Today we have around 1150.
4: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
3: Which will make a big change.
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने कहा है कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
3: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
4: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
3: विच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन।
0: अरुणाचल प्रदेश के शहरी कार्य, भूमि प्रबंधन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री बालो राजा ने आनी डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में शहरी विकास और भूमि प्रबंधन विभागों की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान संबंधित विभागों ने जिले में चल रहे कार्यों, विकासात्मक

0: शहरों तथा शहरी विकास और भूमि प्रबंधन से जुड़ी प्रमुख मुद्दों की स्थिति प्रस्तुत की। मंत्री ने विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों के साथ नियोजित शहरी विकास, प्रभावी भूमि प्रबंधन तथा नागरिक बुनियादी ढांचे में सुधार से संबंधित विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर विधायक मोपी मिहू एवं उपायुक्त यशवंत मीणा भी उपस्थित रहे। अरुणाचल प्रदेश में अपनी सुरक्षा की तैयारियों को और मजबूत करना तथा शीत ऋतु के दौरान आपात स्थितियों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधीक्षक पुलिस अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं जॉन पाता ने अग्निशमन और आगामी शीत ऋतु को देखते हुए राज्य के सभी अग्निशमन केंद्रों के प्रभावी अधिकारियों को 24 घंटे परिचालन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। सभी अग्निशमन केंद्रों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन वाहनों में हर समय पर्याप्त पानी भरा रहे तथा सभी आवश्यक अग्निशमन उपकरण 24 घंटे उपलब्ध एवं तैयार रखे। इस निर्देश में आपात स्थितियों में प्रभावी कार्रवाई के लिए लगातार तैयार रहने और अग्निशमन संसाधनों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। तवांग विधायक नांगी शेरिंग ने सॉल्ट ट्रैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एक विरासत पहल है जिसके माध्यम से उन लोनपा पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जो कभी नमक और अन्य आवश्यक वस्तुएं लाने के लिए दुर्गम ऊंचे वाले पहाड़ी इलाकों पर तिब्बत तक जाया करते थे। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विधायक ने सॉल्ट ट्रैक को एक ऐतिहासिक पहल बताया जो युवा पीढ़ी को अपने पूर्वजों के संघर्ष, दृढ़ता और ज्ञान से फिर से जोड़ती है। उन्होंने युवाओं से अपनी विरासत पर गर्व करने और मोन्यूल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भारतीय सेना के अधिकारियों, विद्यार्थियों, युवा एवं ट्रैकर्स सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। स्वदेशी आस्था, परंपरा और ज्ञान के संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन के लिए जमीन स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत स्वदेशी आस्था के स्वयंसेवकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला ईटानगर के जलंग परिसर स्थित आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में शुरू हुई। पहली बार आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम का उद्घाटन गृह राज्य मंत्री मोमिन अतुम द्वारा किया गया। अरुणाचल प्रदेश के वुशु खिलाड़ी निमान वांगसू ने आज जापान में आयोजित 2026 एशियाई खेलों में महिला सांगचुआन में फाइनल मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व किया। निमान वांगसू ने 16 खिलाड़ियों के बीच 9.573 अंकों के साथ 15वां स्थान हासिल किया। लोंगडिंग जिले के कानुबारी की रहने वाली निमान वांगसू अरुणाचल प्रदेश की पहली ऐसी वुशु खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने दूसरी बार एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IEMI नंबरों के साथ छेड़छाड़ के से सतर्क रहने का आह्वान किया है।
1: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट।
0: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल कर लिए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रही है। वहीं इस संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी रहा। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते हैं। हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और सुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक

everyone who has supported this workshop. And Geshe-la ne already bataya ki kitne logon ka yogdan tha. Magar specifically, Kaldinla ji and your department, thank you so much, Karmic and Adhyatmic Affairs, for really taking care of all of us and having that initiative. Yahan ke leadership, government leadership, the minister took time to come from Itanagar. Aap bhi aaye hain do baar, shuru mein aur abhi. And most importantly, Rinpoche-la and the larger foundation and the whole team, thank you so much. But sabse zyada main thank you kehna chahti hoon participants se. Ye aap sab idhar aaye, aap sab ne participate kiya, humne maza bhi kiya, bahut socha bhi. Aur ye jo hai ye shuruaat hai, ye jhalak hai. Hopefully aage badhke hum aur cheez kar sakenge. मैं स्लाइड्स इसलिए यूज़ करती हूँ कि कभी कभी ना जब हम बात करते हैं तो लोग जोन आउट हो जाते हैं, तो कभी कभी स्लाइड देने से हम प्लेस होल्डर रख सकते हैं क्योंकि हर जन अलग तरीके से सीखता है. आई वॉज टोल्ड टू जस्ट वेरी ब्रीफली टॉक अबाउट ये कैसे दिख सकता है अरुणाचल में. ये हमारी उम्मीद है, बिग पिक्चर है, एंड आई एम ओनली गोइंग टू शेयर दैट. द स्पेसिफिक्स हमें साथ में मिलके करना होगा, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस लार्जर विजन, दिस लार्जर आइडिया कि क्या हो सकता है. 3 दिन हमने बिताए यहाँ, उसके बाद क्या होगा या कैसे लिख सकता है, इसका पाथवे क्या हो सकता है. तो वेरी ब्रीफली आई वॉन्टेड टू शेयर कि हमने जो किया है यहाँ वो पहले स्टेप 1 था, झलक था, ट्रेलर था. अभी पिक्चर तो बाकी है, देखना है पिक्चर को. हम आए थे आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए, सी लर्निंग का ट्रेनिंग वर्कशॉप दिया, बट द मेन थिंग इज इसके बाद क्या होता है. क्योंकि सी लर्निंग, जैसे Geshe-la ने कहा कि इफ यू वॉन्ट टू टेक इट इनटू क्लासरूम्स, उसका मतलब है कि हमें समझना चाहिए, हमको खुद को प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम बच्चों तक लेके जा सकते हैं. तो उसके लिए दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो टीचर्स को बनाना जो दूसरे टीचर्स तक लेके जाए, उनको मेंटोर कर सके, उनको समझा सके, विच इज समथिंग दैट वी कॉल, टेक्निकल टर्म है, अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं, L1 फैसिलिटेशन, Level 1 फैसिलिटेशन. और दूसरा लेवल है क्लासरूम फैसिलिटेटर्स. हर टीचर दूसरे एडल्ट्स तक नहीं लेके जा पाएगा, मगर वो अपने क्लासरूम में तो लेके जा सकता है. ये हमारी उम्मीद होगी, होप है कि हम अरुणाचल में दोनों लेवल के काड्र ऑफ टीचर्स बना पाए जो इवेंचुअली कंपैशनेट फ्लरिशिंग क्लासरूम्स एंड कंपैशनेट फ्लरिशिंग स्कूल्स बनाए. दैट इज रियली आवर एंड गोल. और उसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग अ कंपैशनेट टीचर और कंपैशनेट स्कूल और अ फ्लरिशिंग स्कूल. इट मीन्स दैट टीचर्स फील वेल एंड स्टूडेंट्स फील वेल. And when I use the word well, it doesn't mean well, health-wise well. Health-wise, of course, is important. But जहाँ जो भी हम करें क्योंकि ये अगर हम ले रहे हैं सी लर्निंग, तो it must be able to reach more teachers, more students, more schools. तो ये जो है हम encompass करते हैं, जो teachers in service से अभी काम कर रहे हैं, pre-service teachers also. Why not make सी लर्निंग a very important part of सी pre-service teacher training. So we are already creating future ready teachers who already have the skills of how to bring C-learning classroom. But unka jo teaching ka tarika hai, wo tarika pehle se hi hum unko pre-service training mein hi de sakte hai. Aur most importantly diet trainers, kyunki diet trainers are very important jo jaake dusre schools mein, alag alag districts mein support karte hai unke context mein. ये हमारी उम्मीद है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. डूइंग इट एंड चेकबॉक्स करना का मतलब है कि हाँ जल्दी जल्दी हम कुछ कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, बट वी वॉन्ट क्वालिटी. और क्वालिटी का मतलब है कि हम उस तरह के टीचर्स को कल्टिवेट करें. कंपैशन इज अ कल्टिवेटिंग प्रोसेस. उसका मतलब है कि हमें उसको नर्चर करना है, वो सीड्स है, हमें उनको बनाना है. तो ये जो है, हाउ कैन वी कल्टिवेट टीचर्स हु आर डीपली इन्वेस्टेड इन एजुकेशन ऑफ द हार्ट, सोशल इमोशनल एथिकल स्किल्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सस्टेनेबिलिटी. ऐसे नहीं हुआ कि ये आया और गया. हम जानते हैं कि ऑल कंपाउंडेड थिंग्स आर इम्पोर्टेंट.

परमानेंट, कोई चीज रहेगा नहीं, बट द पॉइंट इज कैन बी सेट प्रैक्टिस इन प्लेस दैट दिस इज अ लेगेसी दैट इज लेफ्ट बिहाइंड. अरुणाचल सेट्स हैज अ विजन, अ लेगेसी. Whoever comes and goes, people can say Arunachal's education system has this as a built-in practice. तो इसमें जो है कि हम prioritize करके, identify करके उन जनों को select करें जो willing भी है सीखने के लिए, but also to be able to lead and train in the local language and support district-wide implementation. और फिर उसके बाद, how do we create monthly or bi-monthly follow-up sessions to make sure कि हमारे जो teachers हैं हम उनको support कर रहे हैं. हम क्या community बना सकते हैं जहाँ ये teachers फुले, जैसे हम फुले फले बोलते हैं, मगर not just flourish but वो दूसरों, उनकी skills भी बढ़ती है, वो दूसरों तक भी लेके जा सकते हैं. And also encouraging, and this is where partnership comes in, कि keep the motivation up, engagement up. जहाँ वी रेगुलरली हैव एक्टिविटीज, जहाँ टीचर्स को भी इन्वॉल्व, लाइक कंटिन्यूड लर्निंग प्रोसेस. एक बार हुआ और फिर हम भूल नहीं जाते, हम कैसे कंटिन्यूड लर्निंग, एंगेजमेंट, मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज वेयर द पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन कम्स इन. हाउ कैन वी कोलैबोरेट क्लोजली विद द गवर्नमेंट एंड द वेरियस डिपार्टमेंट्स और रिलेटेड डिपार्टमेंट्स to really seek their support, to join with them in what their vision is, unka vision kya hai, aur wo hum fir convert kar sakte in the how hamare paas hai, magar ye join hona pade, sangam ki bahut zarurat hai, and therefore that we can work with either diet teachers, in service teachers, school leadership, pre service teachers. Kal ya parso kisi ne mujhe kaha ki anganwadi and asha workers as well, kyunki anganwadi have now taken the responsibility of preschool education. Pehle preschool education used to be with the Department of Women and Health. Now it is under the Department of Education. So can we start creating nurturing environments from the very beginning by supporting all the welfare workers, all the state teachers to be able to bring C-learning, taki ye hamare system ka hissa ban jaye. No one says it's different. Drop in the ocean or पानी और ओशन एक ही बन जाता है. एंड फाइनली ये हमारा एस्पिरेशन है कि ये नंबर और भी एम्बिशियस हो सकता है, और मैंने ऐसे ही लिख लिया क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वी हैव टू थिंक बिग, तो मैं स्मॉल सोची हूँ. एटलीस्ट 50-80 टीचर्स एक साल में हम कह सकते हैं कि वो सी लर्निंग अपने क्लासरूम में लेके आ रहे हैं. नॉट ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, अपने क्लासरूम में लेके आ रहे हैं. उसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट है, वो ट्रेनिंग कर चुके हैं, वो क्लासरूम में हम देख सकते, कोई भी जाएगा देखेगा कि सी लर्निंग के प्रैक्टिसेस इस क्लासरूम में है. होपफुली इन ईयर टू, इफ दिस इज अ लार्जर मैप वी आर हैविंग, वी आर एबल टू से कि एटलीस्ट इन तवांग एंड वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट वी हैव 10 लेवल 1 फैसिलिटेटर्स. उसका मतलब है आप में से ही 10 लोग होंगे जो आपके टीचर्स को सपोर्ट करेंगे अपने भाषा में, और 5 ऐसे स्कूल होंगे जो मॉडल स्कूल बोल सकते हैं या चैंपियन स्कूल बोल सकते हैं, जहां एक नहीं एक से ज्यादा टीचर है, जहां लीडरशिप, स्कूल लीडर्स आर ऑल्सो डीपली इन्वेस्टेड इन सी लर्निंग, नॉट जस्ट बोटी टीचर्स, द होल स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन. एंड होपफुली इन ईयर 3 we can say ki Tawang district and West Kameng district is an example, the other districts say ki are ye log kya kar rahe jo hum nahi kar rahe, hame bhi ye karna hai. To ye hum, mera outline hua, ye hum saath mein milke kar sakte hain, magar this is, main sochti hu ye chota hai, ye bahut, magar ye bahut doable hai. Aur very quickly just to end ki ye kaise hoga, aap sochenge are yaar ye ideas to bahut bade bade de rahi hai, magar kya hoga, kaise hoga. और इसका भी प्लान है क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, हम 8 साल से काम कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. आपने तो स्टेप 1 खत्म कर लिया, यू आर ऑलरेडी 1 वेरी वेल वे अहेड, 3 डेज यू हैव डन. नाउ वी वांट टू डू मोर 3 डेज इन मोर एरियाज विद मोर टीचर्स वी कैन, एंड फ्रॉम दीज वी कैन पिक अप और आइडेंटिफाई उन टीचर्स को जिनको इंटरेस्ट है, जिनके पास अवेलेबिलिटी टाइम है, विलिंगनेस है, स्किल सेट है, ताकि वो एक ऑनलाइन 10 महीने का, जैसे मैं कहा, सफर तैर करने के लिए तैयार है, जो हमारे साथ, हमारे लोकल L1 फैसिलिटेटर्स के साथ जो सपोर्ट करेंगे.

0: यहाँ बहुत जन भी हैं जो स्पेस दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। अभी मैं कह रही थी रिम्पोछे को, रिम्पोछे जी को कल, कि आपको सी लर्निंग रिम्पोछे बोलना चाहिए, बिकॉज ही इज टेकन दैट इनिशिएटिव एंड हैज बीन सो सपोर्टिव इन दिस। सो होपफुली वी विल हैव दिस एज अ सी लर्निंग हब। और ये जो है, ये इंटीग्रेटेड मॉडल जो है, उससे क्या होगा कि हम टीचर्स को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं क्लासरूम तक कैसे लेके आने। पूरा किताब करने की जरूरत नहीं है, जैसे गेशिला भी कल बता रहे थे, आज भी उन्होंने बताया कि सी लर्निंग इज नथिंग बट अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। अगर 10 भी प्रैक्टिस सी लर्निंग से, सिंपल प्रैक्टिस, बॉडी लिटरेसी प्रैक्टिस, क्लासरूम प्रैक्टिस एंड एनालिटिकल प्रैक्टिस, टू जस्ट वॉच आर इमोशंस, टू जस्ट सपोर्ट हाउ वी आर इंगेजिंग, टू बी एबल टू कल्टिवेट ये जो स्किल्स ऑफ कंपैशन, एम्पथी, एंड टू बिगिन टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो योगदान है या हमारा इन्फ्लुएंस है, इतने बड़े सर्किल में, कम्युनिटी में कैसे होता है। सब चीजें अपने आप संभल जाती हैं, एनवायरनमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल हेल्थ। आई वुड से इट्स एक्चुअली बेसिकली द एंटीडोट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इफ वी रियली टेक इट इन दैट सेंस। एंड आप लोग बहुत अच्छी तरह से पोजिशन है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द धर्मा, सो यू आर ऑलरेडी डीपली इन्वॉल्व इन दैट। This is just make it simpler to how to take it into the classroom.
1: Lanyin hang. Uzu yu je, ang yu bi je, LD Scholars Home, Chukur Dink, Principal, Cham, Tanyan Lamu si, Benang, Samchar Namu, San Nang Sa.
2: My name is Tenzin Lamu and I run a private school. I'm the principal. When yesterday we were asked to share our experiences, I thought I should take this opportunity, because what it did to me was really something I should express, and it might be a little raw because I'm not used to standing on stage. And I would really like to thank Gen Tender, because I didn't know about this program. He called me and he said, you should attend this program. And I'm glad I listened to him. So let me go 3 days back. What did I expect? I expected it would be like any other training, any other teacher training. They would teach us modern techniques of teaching, the traditional methods we are used to, beating, scolding, punishment. So wahi maine expect kiya tha. But when I entered the first day, after 10 minutes, I was really captivated. I know it sounds dramatic, but I was really captivated, because I'm that kind of person whose attention doesn't stay even for a minute. It starts wandering. 2-3 minute mein mera dhyan bhatak jata, idhar dekhte, usne kya pehna hai, wo kya bol raha hai. But in the first day, the way Miss Reshma, Olivia ma'am, Genla taught us, I was like mesmerized, like they're involving us, making us do things, and mostly they're making us realize. And we learned about pillars of sea learning, Avatha dimension, 4 pillars. But there's this one thing that stayed with me, and that was compassionate classroom. As a teacher, as a principal, I never thought ki mujhe compassionate sikhana padega, kindness sikhana padega, uske liye to Rinpoche hai, Wang hai. My world, it was revolved around, honestly, as a private school teacher, bachcha ko top karana hai. स्कूल का नाम अच्छा होगा, स्कूल का नाम अच्छा होगा तो मेरा ज्यादा एडमिशन आएगा, इसी में रिवॉल्व था। एंड नेवर इन माय लाइफ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 years, आई नेवर थॉट टू बिकम अ टीचर। इट वाज फोर्स्ड अपॉन मी बाय माय हस्बैंड, आई कैन से दैट। आई नेवर थॉट इवन वंस कि व्हाट एम आई टीचिंग और व्हाट आर द किड्स लर्निंग फ्रॉम मी। इट वॉज ऑलवेज ये पोएम रट्टा मार के आओ, नहीं तो कल 10 out of 10 नहीं मिलेगा तो पनिशमेंट मिलेगा। एंड नोटबुक नीटली नहीं लिखा तो स्क्रैच करते, आई हैव दैट हैबिट। हमारा यहाँ TSF का ही स्टूडेंट्स है, तो नीटली लिखो बोल के आई स्क्रैच, आई मेक देम राइट अगेन। सो माई थिंकिंग वॉज, वेन गेनला एंड ऑल टोल्ड अस अबाउट कंपैशनेट क्लासरूम, वी डिस्कस्ड इन टी ऑल्सो, बोलने के लिए तो बहुत आसान है, हाउ वुड आई इम्प्लीमेंट इट। एंड देन इन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, समथिंग इन मी क्लिक्ड, आई रियलाइज्ड कि अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है, देन आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। I don't have to put a 10 gun pura extra.

0: बतलाना नहीं है, बट 1% ऑफ माई सेल्फ इफ आई कुड चेंज, बिकॉज एज मेनी ऑफ यूर नो मी, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, ईट का जवाब पत्थर से देगा। उसने हमको एक बोलेगा, हम दो बोलेगा, नहीं तो नींद नहीं आते मेरा, हमको ये बोलना चाहिए था। दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। आई एम नॉट अ कंपैशनेट पर्सन एंड आई रेयरली अटेंड रॉन्ग एंड ऑल। सो दैट मेड मी रियलाइज वट एक्चुअली इज कंपैशनेट क्लासरूम। आई कैन गो एंड टेल टीचर्स आज से कंपैशन पढ़ाओ, बोले काइंडनेस पढ़ाओ, बोले पढ़ाओ। आई लर्न फॉर मी परहैप्स मैम कंपैशनेट क्लासरूम इज समथिंग विच आई कैंट फोर्स किड्स और दिस लिटिल टाइनी ह्यूमन बींग्स। आई एम रेस्पॉन्सिबल इवन 1% टू शेप देयर लाइफ। शेप आउट ऑफ 24 hours 9 hours देयर विथ मी द क्रूशियल टाइम। दे आर लाइक दिस टाइनी क्ले, वी प्ले विथ क्लेज राइट। आई एम रेस्पॉन्सिबल लाइक हाउ शुड आई शेप देम। ज्यादा प्रेशर देगा टूट जाएगा, थोड़ा इधर उधर ध्यान भटक जाएगा तो टेढ़ा हो जाएगा। सो आई रियलाइज कंपैशनेट क्लासरूम इज वेयर आई कैन नॉट टीच बट वेयर दे कैन लर्न फ्रॉम माई एक्शंस। एक दिन होमवर्क नहीं किया होगा ठीक है, बट आई थिंक एकेडमिकली ऑल्सो वी हैव टू गो फॉरवर्ड। सो इन दैट 3-day प्रोग्राम इफ इट मेड मी थिंक इवन 1% कि आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, देन आई रियलाइज कि अगर इफ दिस थिंग इज इम्प्लीमेंटेड इन द होल डिस्ट्रिक्ट वेयर वी इन्वॉल्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, एनजीओस, हेड ऑफ विलेजेस, देन वॉट वुड इट डू। One teacher, one school, one community at a time. And for that, I would like to thank each and every person behind the scene for putting their heart, soul into making this program a successful one. And I hope we get to experience more of this program. Thank you.
1: Angi biji LDS Scholars Home Chukurdeng Labdrak Principal Jam Tenzin Lamosi Benang Uts Si Sheun Sabjong Yaguchuki Kheban Si Rasu Inam Ijikur Benang Samchandang San Nambur Da Angsumpani Jukta Je Kundan Zawa Tawang MLA Kushab Namge Tsering Si Kalab Nang San Nangsa
2: Trashidilak and my prayers and good wishes to each and every one of you. It is indeed an honor and privilege for me to be a part of the concluding day of the 5-day workshop on social, emotional and ethical learning. On the inaugural day, I had the opportunity to listen to the enlightening keynote address of Learned Venerable Kishi Lhavtola. While listening to him, one thought strongly came to my mind that such an important program should not remain confined only to our educators. I sincerely feel that in the future, similar workshops should also be extended to government officers, public representatives, and politicians like us. The lessons of compassion, emotional awareness, ethics, resilience, and responsible behavior are not required only inside classrooms. They are equally important in our offices, institutions, public life, and most importantly, in the way we serve and interact with our people. I believe that the life lessons and hands-on training imparted by the learned resource persons during these 5 days can become a powerful instrument for the constructive development of our society. I am very positive that our educators have gained valuable knowledge and experiences during this workshop, but the real journey begins after you return to your respective schools. The knowledge you have received here will now travel with you into your classrooms. Through you, it will reach hundreds and thousands of young minds. And when these lessons are imparted with

0: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1 to 3 minute का वीडियो बनाओ और शो केस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31st अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: मिली में 197.2 meters अर्थात 1521 kHz और 104.4 FM MHz पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:11 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, आप प्रस्तुत है कार्यक्रम चरुखा। कार्यक्रम चरुखा में आइए पहले

सुनते हैं दोजी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज से प्राप्त एक सूचना। दोजी खंडू राजकीय महाविद्यालय तोंग में शैक्षणिक सत्र 2026 से 2027 के लिए 5 अतिथि संकाय यानी गेस्ट फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है: अंग्रेजी में एक पद, हिंदी में एक पद, हिस्ट्री में एक पद, इकोनॉमिक में एक पद और ज्योग्राफी में एक पद। उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ एमए डिग्री तथा नेट, स्लेट या सेट की योग्यता होनी चाहिए। एसटीएससी उम्मीदवारों के लिए एमए स्तर पर अंकों में 5% की छूट का प्रावधान है। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए तथा एपीएसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया साक्षात्कार एवं वाइवा वेस के माध्यम से होगी। साक्षात्कार की तिथि, समय एवं स्थान। अंग्रेजी एवं हिंदी विषय के लिए साक्षात्कार की तारीख होगी 25 सितंबर सुबह 10 बजे तथा हिस्ट्री, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी के लिए 26 सितंबर सुबह 10 बजे। स्थान रहेगा प्रधानाचार्य कक्ष, दोजी खंडू राजकीय महाविद्यालय तवांग। अधिक जानकारी के लिए दोजी खंडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के कार्यालय से संपर्क करें। सूचना समाप्त हुआ। आइए श्रोता, अब आपको हम अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों से। अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर मनपा कार्यक्रम शेदुनलेरी में सुन पाएंगे लामा रिंचिन सेवांग गेलोंग जम्बा तेंदर और लामा निमा सिरिंग द्वारा शेदुन क्यूंचक सुम्पा और लामा छोपा छोकर। शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। आज इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे कृषि विज्ञान केंद्र के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी के साथ हुए एक भेंटवार्ता। शाम 7:30 पर कार्यक्रम फौजी बायु के लिए फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप आनंद ले पाएंगे फिल्म एक रिश्ता से उदित नारायण और अलका याग्निक, तुमसे मिलके रोंग नंबर फिल्म से अनुराधा पोर्टवाल और कुमार सानू, फिल्म नाम गुम जाएगा से अनुराधा पोर्टवाल और उदित नारायण के आवाजों में चंद फिल्मी नगमे। शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे फिल्म स्वदेश से एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8 बजे आप आनंद ले पाएंगे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोताओ द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमे। रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्किन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 8:09। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 22 सितंबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह हमारा सभा आरंभ होगा कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिट्टी न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कल दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रदेश संगीत। कल इस कार्यक्रम में आप आनंद ले पाएंगे मायू हजरिका के आवास में चंद आधुनिक असमीय फिल्मी गीत। कल दोपहर 3:33 पर महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कल इस कार्यक्रम में आप आनंद ले पाएंगे फिल्म बिल्लू से सोहम चक्रवर्ती, आकृति कक्कर,

Yeah,

네. 제나마라즈나사마다라야에미마지제제바단지 제와제야제베남가라야다자사바다베이랑오

Yeah,

Yeah,

0: भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए

0: की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भेरुंदा तहसील के एक गोदाम से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 1,00,000 रूपये और बहराखेड़ी गांव के दूसरे गोदाम से 60,000 रूपये की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने तीन पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इससे पहले कल एला विनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किए, जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। वहीं कबड्डी में पुरुष टीम ने जापान को और महिला टीम ने बांग्लादेश को पराजित किया। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijaya Dashami. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
1: Mr. Goyal said this agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans. He said New Zealand have committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. Mr. Goyal said India and Canada have also agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, with the next round of talks set to commence on 5th October. He said the next 90 days could be a defining period in bilateral relations. On the Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said, more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter.

0: and sustainability of the Indian Army's mechanized formations. Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel today said that India's journey in pharmacovigilance has been a remarkable example of self-reliance over the years. She said this while releasing the 7th edition of National Formulary of India in New Delhi. She also said 25 countries in the world recognize and accept the Indian pharmacopoeia and added that the country now provides pharmacovigilance data to WHO patient safety database. The National Highways Authority of India has released new guidelines for the planning and designing of high-speed access-controlled national highways. The Ministry of Road Transport and Highways said the guidelines seek to bring uniformity in standards for preparation of detailed project reports of high-speed national highway corridors. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the demise of Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum. He was the brother of Dubai's ruler Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. In a social media post, Mr. Modi said that his efforts to serve society will be cherished by generations to come. The Prime Minister also extended condolences to the royal family and the people of Dubai. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also expressed grief at the demise of Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum. Russia's ruling United Russia Party has taken the lead in the country's parliamentary elections, according to preliminary results released by the Central Election Commission. The party secured about 57.5% of votes, while overall turnout stood at 56.66%. Final results are expected by 25th of September. The election took place amid the ongoing conflict with Ukraine and a major overnight drone attack launched by Kyiv, involving more than 1,900 drones, killing at least two people and damaging an oil refinery. The Combined Index of Core Industries, ICI, recorded cumulative growth of 4.8% year-on-year in August. This is slightly less than the downwardly revised growth rate of 5% recorded in July. In Asian Games, India won 3 medals in shooting at Aichi Nagoya in Japan today in the men's 10-meter air rifle individual event. Himanshu Dhillon won the silver, while Rudraksh Patil secured the bronze. India also bagged a silver in the men's team event of the same competition. In mixed martial arts, Suchika Tarial has become the first athlete from the country to win a medal, securing bronze in the 60-kilogram category. In the medals tally, India is currently in the 12th place with a total of 6 medals, including 4 silver and 2 bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय शाम के 7:10 हो गए हैं. निजी श्रोताओं प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण. आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी के साथ हुए एक भेंटवार्ता. वार्ता का विषय है सब्जियों में रोग एवं कीट प्रबंधन. इनसे भेंट करता है तोजी ड्रेमा.
2: नमस्कार. आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण सुन रहे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ. श्रोताओं, आज हमने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में एक बार फिर कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी जी को आमंत्रित किया है. तो डॉक्टर अभिमन्यु जी, आपका एक बार फिर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ.
3: धन्यवाद
2: जी. तो श्रोताओं, आज हम डॉक्टर अभिमन्यु जी के साथ चर्चा करेंगे सब्जी फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन विषय पर. डॉक्टर अभिमन्यु जी, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि रोग और कीट में क्या अंतर है, तथा किसान यह कैसे पहचान सकते हैं कि फसल में रोग से प्रभावित है या फिर कीटों से.
3: बहुत ही अच्छा प्रश्न है. रोग जो होते हैं ना, प्रमुख रूप से फंगस से होते हैं. फंगस हिंदी में कवक कहते हैं. और इनका जो काजल एजेंट होते हैं वो नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते. बहुत ही माइक्रो लेवल पर इनको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत होती है. इसके अलावा कुछ रोग निमेटोड्स से भी होते हैं. वो भी बहुत टीनी साइज में होते हैं. वो मिट्टी में होते हैं और कोई भी फसल के संपर्क में आते हैं तो फसलों में बहुत सारे सिम्टम डेवलप होते हैं, जैसे कि पत्ती लाल होती है, पीली हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है. तो ये रोग हो गया. इसके अलावा कीट चूंकि आंख से देखे जा सकते हैं.
2: अच्छा,
3: कीट बड़े साइज के होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं. कीट के लार्वल स्टेज ज्यादातर फसलों को नुकसान करती है और कीट प्रमुख रूप से फसलों को किसी न किसी रूप में काटते हैं या पत्ती को काट देंगे.

0: घोल कर देंगे। इस प्रकार का लक्षण आता है, तो इस प्रकार से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रोग और कीट का।
1: क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियाँ बहुत सारे उगाए जाते हैं, कई बार कई लोगों को ये पता नहीं चल पाते हैं कि उनके सब्जी में कुछ तो हुआ है, अच्छी नहीं आ रही है, कुछ या पीले पड़ गए हैं या कीड़े खा गए हैं। ये तो आपने बताया, देख सकते हैं ये जो कीट से जो प्रभावित है उसे तो देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा है कि उनको पता नहीं चलता कि प्रभावित किस चीज से हुआ है या फिर इसके क्या इलाज करें, ये पता नहीं चलते हैं। तो अगर आप जैसे एक्सपर्ट हमारे इस कार्यक्रम में इन सारी चीजों का समाधान भी बताए जाएं तो हमारे किसान श्रोताओं को बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। अगर हम विशेष रूप से तवांग के बारे में चर्चा करें तो तवांग में आपने देखे होंगे अब तक यहाँ पर मिर्चे बहुत लगाते हैं, चिली फार्मिंग बहुत किया जाता है, विशेष रूप से हमारे यहाँ के जो लोकल मिर्चे होते हैं वो लगाते हैं। तो मिर्चे में कई बार ये समस्या आते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं या फिर कीड़े खा जाते हैं, तो ऐसा करके बहुत सारे समस्याएं आने लगती। इसको कीट से प्रभावित होते हैं रोग से कैसे पहचाने?
0: मिर्च में प्रमुख समस्या जो है एक एंथ्रेक्नोज रोग होता है, उसके कारण होता है ये फंगस फफूंद से होने वाला ये रोग है। इसमें क्या होता है कि मिर्च की पत्तियां ना ब्राउन कलर के होके ट्विस्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। जब पत्तियां में ब्राउनिश हो जाएगा मीन्स उसका जो हरा कलर है ना वो कम हो जाएगा तो पत्तियां कमजोर हो जाएंगी। उसमें हरा कलर को भी कोई पौधे में होता है प्लांट में क्लोरोफिल के कारण होता है। फंगस क्या करता है कि ब्राउनिश कलर होने से मतलब क्लोरोफिल को के अमाउंट को कम कर देता है, जिससे उनका फोटोसिंथेसिस से उनका जो खाना बनने की जो प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस वो स्लो पड़ जाती है और पौधा हमारा कमजोर हो जाता है, जिससे हमारा मिर्च का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। पत्तियों के अलावा ये मिर्च की फली लगी है तो उसमें भी भूरे भूरे ब्राउन कलर के धब्बे बन जाते हैं जो कि बाद में काले भी हो जाते हैं और बड़े स्पॉट में हो जाते हैं। तो ये प्रमुख सिम्टम है, प्रमुख लक्षण है पहचान का कि ये हमारा एंथ्रेक्नोज रोग लगा हुआ है। इसका कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है हम ऑर्गेनिक तरीके से इसका कंट्रोल करें, एक केमिकल का प्रयोग करके करें। तो जनरली तवांग में या पूरे अरुणाचल में हम ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि केमिकल का प्रयोग न हो तो ठीक है। तो ऑर्गेनिक तरीके से क्या है कि एक बीटी पाउडर होता है बैसिलस थुरिंजेंसिस, ये बायो कंट्रोल एजेंट होता है। इसका 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में 1 ग्राम पर लीटर वाटर डोज हिसाब से इसको जहां हमारा एंथ्रेक्नोज बीमारी लगी है वहां हम इसको स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। और 10 दिन बाद दोबारा हम इसका स्प्रे बीटी स्प्रे करना चाहिए, हमारा ये जो पत्तों का भूरा कलर है ये सब कम हो जाएगा। यदि रोग बहुत ज्यादा किसी पौधे में ज्यादा लगा है तो हम अपने खेती से उस पौधे को उखाड़ के खेत से दूर गड्ढा खोद के उसमें दबा के ऊपर से मिट्टी ढक दें, क्योंकि नहीं तो फंगस से पूरे खेत में ये रोग फैल सकता है।
1: जी, और वैज्ञानिक तरीके क्या हो सकते हैं मिर्च के जो बीज बुआई से पहले जो हम किए जा सकते हैं?
0: हाँ, सीड ट्रीटमेंट की जैसे बात आती है कि मिर्च में हम जब नर्सरी में बीज लगाते हैं उस समय हम मिर्ची के बीजों को ट्रीटमेंट कर दें और नर्सरी में लगाएं, तब हम उनमें कुछ डिसीज रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास दो तरीका है, एक है ऑर्गेनिक तरीका, एक है इनऑर्गेनिक तरीका, दोनों लाभदायक है। क्योंकि जहाँ तक हम लोग केमिकल से डरते हैं, केमिकल से डरना चाहिए लेकिन हर केमिकल का एक रेजिडुअल इफेक्ट होता है, एक टाइम बाउंडेड होता है, अधिकतम केमिकल 20 से 25 दिन बाद खत्म हो जाते हैं, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। बाविस्टीन एक फंगीसाइड आता है फंगस को मारने वाला, 1 ग्राम दवा से हमारा 1 किलो तक बीज ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या करना है कि उसके बीज के ऊपर चारों ओर दवा को अच्छे से छिड़क के हल्का सा पानी हो करके और मिक्स कर देना चाहिए ताकि वो बीज पर वो दवा चारों ओर से अच्छे से लिपट जाए, तब हमको खेत में डालें। तो क्या हुआ कि उसके ऊपर एक कोटिंग टाइप में हो जाएगी, फंगस जो अटैक करते हैं तमाम प्रकार की बीमारी को उत्पन्न करते हैं उनका अटैक कम हो जाएगा। दूसरा है बायो कंट्रोल तरीके से, उसके लिए ट्राइकोडर्मा से भी हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, मतलब अगर 1 केजी मिर्च का बीज है तो 5 ग्राम, इसको भी इसी तरीके से 5 ग्राम ये ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक बायो एजेंट है, मिर्च के बीज पर चारों पाउडर को छिड़क के हल्का सा पानी मार के मिक्स कर देंगे तो ये बीज में चिपक जाएगा, फिर हम बीज को नर्सरी में डालेंगे तो हमारा बीज हेल्दी उगेगा। जो मिट्टी में तमाम प्रकार के फंगस होते हैं अटैक करते हैं उससे हमारे नर्सरी में जो बीमारी नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा नर्सरी के दौरान ये हम उपयोग इसका कर सकते हैं।
1: अगर सब्जियों में कीटों से प्रभावित होने वाले हैं तो उसके शुरुआती लक्षणों को हम कैसे पहचाने, एक किसान उसे कैसे पहचाने?
0: कीट तो

0: अलग अलग स्टेज पर लगते हैं। जैसे कि हम कोई भी फसल खेत में लगाएं,
1: हाँ,
0: तो एक कटुआ वो क्या करता है, जैसे मिर्चा लगाएं, गोभी लगाएं खेत में, नर्सरी से उखाड़ के मेन खेत में लगाएं, तो पौधे नरम होते हैं। वो क्या करता है कि मिट्टी की सतह से बराबर में रात में निकलता है मेनली और काट देता है, तो जिससे हमारा लगाया वाला ही पौधा कट जाएगा तो आगे प्रोडक्शन तो होगा नहीं। के ट्रीटमेंट के लिए भी दो तरीका है, या तो नीम बेस्ड जो कुछ ऑर्गेनिक तरीके से मतलब कंट्रोल करने वाला निम्बी सिडीन वगैरह होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या किसान अगर केमिकल वाला रास्ता अपनाए तो उसके लिए फोरेट होता है, पेस्टिसाइड होता है, उसका उपयोग कर सकते, फोरेट महीन दानेदार केमिकल होता है, उसको खेत में जब हम पौधे लगाते हैं स्प्रेड कर देने से जो कटवर्म होता है वो मर जाता है, तो हमारी खेती बच जाती है।
1: और जैसे कि तवांग एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर मौसम बदलते रहते हैं, तो क्या बदलते मौसम से हमारे जो सब्जियाँ हम उगाते हैं उस पे कोई प्रभाव पड़ते हैं?
0: बारिश का मौसम ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, गर्म ज्यादा होता है, उस समय जो कीट होते हैं उनका प्रकोप ज्यादा होता है। तो ह्यूमिडिटी स्पेशली जब गर्म मौसम और ह्यूमिडिटी में कीटों का मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट होता है, और कीटों का मेनली लार्वल स्टेज 90% केसेज में लार्वल स्टेज डैमेज करती है हमारे खेत में। जो फीमेल फ्लाई होती है जो भी कीट की, वो एग लेइंग करती है, एग लेइंग के बाद अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग ड्यूरेशन होता है, कोई एक हफ्ता बाद कोई 10 दिन बाद वो लार्वल स्टेज में आ जाते हैं, वही लार्वल स्टेज हमारे खेती को डैमेज करते हैं। कभी वो पत्ती पर रेंगते हुए खेतों में देखते हैं, हरे हरे होते हैं, कोई भूरे कलर के होते हैं, वो पत्ती पर जाते हैं, उनका कोई क्लोरोफिल समाप्त कर देता है, मतलब क्लोरोफिल मतलब हरा कलर जो पत्तियों का होता है क्लोरोफिल से होता है, वो खा के समाप्त कर देता है। कभी क्या होता है कि पत्ती वो पूरा जाली जाली जैसा बना देता है। गोभी में स्पेशली पत्ता गोभी में देखिए, फूल गोभी में वो हरे हरे डायमंड नाम से कीड़ा होता है, डायमंड बैक मॉथ, वो क्या करता है, वो उसकी लार्वल स्टेज क्या होती है, वो फूल गोभी में जाके छेद कर देता है अंदर, तो वो भी हमारा नुकसान करता है। फूल गोभी में भी वही लार्वल स्टेज होती है, वो भी नुकसान करती है, तो उसका अलग से स्मेल, गंदी स्मेल आती है और फूलगोभी का क्वालिटी खराब हो जाता है। विभिन्न प्रकार से अलग अलग किस्मों में, बैगन में देखिए, बैगन में फ्रूट फ्लाई होती है, वो अंडे देती है, वो अंदर जब बैगन से उनका लार्वल स्टेज होता है, बैगन जब मैच्योर होता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो कि खाने के लिए जब हम काटते हैं तो दुर्गंध आता है, हमारी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ऐसे बहुत प्रकार से फल में भी होता है, सब्जियों में भी होता है, अवस्थाएं होती है कीटों की, स्टेजेस होते हैं और वो फसल को नुकसान करते हैं।
1: हमारे ये चर्चा जो है सब्जी फलों रुख एवं कीटों से प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है इसी पर हो रहे हैं, तो मैं ज्यादातर यहाँ पर जितने ज्यादा हर सब्जियाँ उगाते हैं इस पर केंद्रित करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी इस समय बहुत सारे लोग मिर्चे लगाते हैं, मैं फिर से कहना चाहूंगी, तो जब उसमें फल लगने के समय आते हैं तो जो मिर्चे उसमें लगते हैं उसमें कई बार मिर्चे जो है सिकुड़ जाते हैं, कभी उसमें काले धब्बे पड़ जाते हैं, कई बार फीके से रंग हो जाते हैं, गीले से हो जाते हैं, या फिर पानी से पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होते हैं? अगर इन सारे जो समस्या होते हैं इनको रोकथाम करने के लिए अभी हम क्या तरीका अपना सकते हैं?
0: वही हम लोग जैसा कि अभी डिस्कस भी किए थे कि उसमें कुछ कीड़े से होता है, कीट से होता है, कुछ बीमारियों से होता है। तो कीट में अभी हमने जिक्र भी किया था कि जैसे डायमंड बैक मॉथ होता है, इसका लार्वा जो है हरे कलर का होता है और पत्तों को क्लोरोफिल को मतलब पत्ते के हरा पौधा को खा जाता है, जाली जैसे दिखता है। ये हमारा मिर्च में भी होता है, गोभी वर्गीय फसलों में भी ये होता है, बैगन में भी लगता है। तो इसका कंट्रोल के लिए हम ऑर्गेनिक तरीके से हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। नीम बेस्ड जो एक हमारा प्रोडक्ट होता है, निम्बिसाइड या निम्बिसिडीन, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग प्रोडक्ट नाम है, इसका डोज जो है 5 ml लिक्विड 1 लीटर पानी में, इस डोज से 5 ml निम्बिसिडीन पर लीटर वाटर हम स्प्रे करेंगे। जब भी हमको खेत में कीट दिख रहा है और उसका एक हफ्ता बाद फिर से दोबारा हम स्प्रे कर दें, तो हम ऑर्गेनिक तरीके से हम इन कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी खेती को बचा सकते हैं। इसके अलावा एफिड्स आते हैं, एफिड्स का प्रकोप जब ज्यादा गर्मी वाला मौसम होता है तब होता है। एफिड क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बहुत ही छोटे, जैसे कि सरसों के दाने के बराबर, वो क्या करते हैं पत्तियों के निचली सतह पर होते हैं और वो पत्तों का रस चूस लेते हैं। जब पत्तों का रस चूस लेंगे तो पौधे हमारे कमजोर हो जाएंगे, फिर उनमें फोटोसिंथेसिस वगैरह रेट कम हो जाएगा, मतलब पौधों की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो कम हो जाएगी, तो हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी है उनका डेवलपमेंट कम हो जाएगा और हमारा खेती को नुकसान हो जाएगा। इसके लिए भी हम निम्बिसिडीन का उपयोग कर सकते हैं, 5 ml प्रति लीटर वाटर इस रेट के हिसाब से। कुछ कटवर्म्स हमने बताया था आपको, जो कि खेतों में जो पौधे अंकुरित हो रहे हैं वो, या नया रोपे गए पौधे, उनको नरम नरम पौधों को जमीन की सतह से काट देते हैं, उसमें भी हमारे खेती नुकसान

0: तो के लिए तो एक बीटी पाउडर होता है, बैसिलस थुरेंजिसिस, एक ये बायो पेस्टिसाइड है। उसका होता है कि 1 kg प्रति एकड़ की दर से, एकड़ तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर छोटा एरिया है तो 1 gram बीटी पाउडर 1 liter पानी, 1 gram पर लीटर वाटर। इस डोज से हम अगर इसको स्प्रे कर दें तो हम बीटी कार्टन को बायोलॉजिकल तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: बोरर्स होते हैं जो कि छेद कर देते हैं फल में, पत्तियों में, पौधों के तने में, स्टेम में छेद कर देते हैं, तो हमारे सब्जियों के पेड़ कमजोर हो जाएंगे, फ्रूट्स क्वालिटी खराब हो जाएगी। स्पेशली बैगन में बोरर का बहुत अटैक होता है, टमाटर में बोरर्स का अटैक होता है, तो हमारी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। तो इसमें भी जो हमने बताया कि बायो तरीके से अगर करना चाहें तो बीटी पाउडर का स्प्रे, 1 gram बीटी पाउडर 1 liter पानी में मिला के स्प्रे करें। एक बार में अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो 7 से 8 दिन बाद दोबारा हम स्प्रे कर सकते हैं।
1: पत्ता गोभी या फूल गोभी को लेकर चर्चा करें तो उनमें ऐसा एक बहुत असामान्य सा बाद में वो जाकर आकार लेते हैं और उनके जड़ों में एक गांठ जैसे पाए जाते हैं।
0: हाँ, ये रोग है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक रॉट। एक ब्लैक रॉट होता है, एक क्लब रॉट होता है। पहले क्लब रॉट में आते हैं। क्लब रॉट में क्या होता है कि गोभी वर्गीय फसलों की जड़ें फूल जाती है, गेंदा के आकार के बॉल के शेप में हो जाती हैं। इससे भी क्या होता है कि पौधा कमजोर हो जाता है और हमारा प्रोडक्शन कमजोर हो जाता है, पौधा फूट के उसमें जड़ें फट जाती हैं, तो नीचे से न्यूट्रिएंट्स वाटर अपटेक कम हो पाता है, नहीं हो पाता है, तो हमारा प्रोडक्शन स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाएगा। हमको क्या करना है कि ट्राइकोडर्मा आता है, ये भी बायो कंट्रोल एजेंट है। इसका हम 10 gram प्रति लीटर वाटर की दर से, जहाँ ऐसा दिख रहा है कि पौधों गोभी वर्गीय फसलों की में क्लब मतलब गोल गोल उनकी जड़ें हो रही हैं, तो वहाँ हमको स्प्रे कर देना चाहिए। ब्लैक रॉट की जो बीमारी आती है दूसरी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें क्या है कि जड़ों अंदर से खोखली हो जाती हैं, सड़ने लगती हैं, और इसका एक बहुत अच्छा लक्षण पत्तियों पर दिखता है, गोभी वर्गीय पत्तियों पर अंग्रेजी के वी, पीले रंग का वी आकार बन जाता है गोभी वर्गीय फसलों में। अगर अंग्रेजी का वी आकार अगर गोभी वर्गीय फसलों में हमें दिखे, हमको ये समझ जाना है कि इसकी जड़े में ब्लैक क्राउट है, एक फंगस है, वो अटैक कर दिया है,
1: पत्तों पर दिखेंगे।
0: हाँ, ये पत्तों पर दिखेंगे। इसका भी है कि बीटी काटन का छिड़काव करना चाहिए, बायो कंट्रोल एजेंट जो है बैसिलस थुरेंजिस, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका स्प्रे करना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि जहां एक बार में ब्लैक रॉट का अटैक दिखे वहां दोबारा हमको गोभी की फसल 3 साल तक नहीं लेनी है, फसल चक्र अपनाना चाहिए। बहुत खतरनाक बैक्टीरिया ये होता है, प्लस क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाना है। फिर एक है हमारा डाउनी मिल्डू आता है, पीला झुलसा रोग। इसमें क्या है कि हमारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, टमाटर वगैरह में भी हमारी ये बीमारी आती है। इसमें क्या है कि निचले पत्ते पर पीले पीले रंग के धब्बे मिल जाते हैं, जब पीले पीले धब्बे हो जाएंगे तो हमारे फसल कमजोर हो जाते हैं, इनकी वजह से हमारे जो पत्तियां झुलस भी जाती हैं, मुरझा भी जाती हैं। तो इसमें भी हमको ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना चाहिए, 10 gram प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसमें स्प्रे करने से हम पीला झुलसा रोग मतलब डाउनी मिल्डू को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हम जरूरी चीज ऐड कर दें कि झुलसा रोग ब्लाइट का भी प्रकोप बहुत होता है। यहाँ हमने जो देखा है आलू में प्रमुख रूप से लग रहा है, बैगन में भी लग रहा है, और टमाटर में भी लग रहा है, इनमें मेजर है और मिर्च वगैरह में माइनर है। तो झुलसा रोग में क्या होता है कि पत्तियां जो हैं, चाहे आलू की हो चाहे टमाटर की हैं, पत्तियां किनारे किनारे से सिकुड़ जाती हैं और सूखने लगती हैं। पहले ब्राउन कलर की होंगी, फिर बाद में काले रंग के हो जाते हैं, और ज्यादा प्रकोप होने से आलू का खेत हो या बैगन का, टमाटर का खेत हो, दिखेगा कि पूरा पौधे एकदम मर से गए हैं, झुलस से गए हैं, ऐसा ज्यादा प्रकोप होने, ज्यादा अटैक होने पर ब्लाइट का ऐसा दिखेगा। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके कंट्रोल के लिए भी हमको ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करना चाहिए, 10 gram प्रति लीटर वाटर की दर से, ऑर्गेनिक तरीके से, और इसमें केमिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि ब्लाइट कंट्रोल ऑर्गेनिक तरीके से नहीं हो रहा है तो। क्योंकि ब्लाइट कंट्रोल 10 दिन में ही बहुत तेजी से करने का मतलब हमारे फसलों को मार देता है, एकदम खत्म कर देता है। क्योंकि जो बायो कंट्रोल एजेंट है बायो तरीके से थोड़ा स्लो प्रोसेस में इनका प्रभाव होता है, तो अगर किसान चाहें तो ब्लाइट कंट्रोल के लिए एक केमिकल का भी सजेशन कर सकते हैं, मैंकोजेब एक रसायन होता है, फंजीसाइड होता है, मैंकोजेब कॉपर का फंजीसाइड होता है, 2 gram प्रति लीटर वाटर, 1 liter पानी में 2 gram इसको मिला करके और हम स्प्रे करें। एक चीज बहुत जरूरी है, जब भी हम खेतों में कोई भी दवा या कुछ भी स्प्रे करें तो उसमें ध्यान दें कि तेज हवा ना चल रही हो, बारिश ना

0: हो रही हो हाँ, ओपन फील्ड कंडीशन में, अगर पॉली हाउस में है तब तो ठीक है, नहीं तो बाहर ओपन फील्ड कंडीशन में तेज हवा चल रही है तो स्प्रे हमारा सही से नहीं होगा। अगर बारिश होने की संभावना है तो भी अभी हम स्प्रे करके जाएंगे वो पानी गिरने से पूरा बह जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, तो उसका भी पौधों में वो ट्रांसलोकेशन अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो भी हमारा वेस्टेज होगा, दवाई का प्रभाव अच्छे से नहीं होगा। तो इन सब बातों को भी हमको स्प्रे करते समय ध्यान देना।
1: कार्यक्रम के अंत में स्वस्थ लाभकारी एवं सतत सब्जी खेती के लिए आप सब्जी उत्पादक किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: अच्छे किस्मों का हम चुनाव करें, अधिक उत्पादन के साथ साथ हमारी बहुत सारे किस्में हैं जो कि बहुत सारे रोग और कीट रोधी रोग रोधी किस्में हैं, तो किसान भाई ऐसे किस्मों का चुनाव करें और तवांग के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वो किस्में हों, कम पानी में हों ताकि पानी की भी हमारी बचत हो, कम न्यूट्रिएंट वाले भी हों, इससे भी हमको न्यूट्रिएंट की भी हो। ऐसी बहुत सारी अनेक विभिन्न प्रकार के फसलों में सब्जियों किस्मों का विकास किसानों ने किया है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट और साथ में हाइडलिंग वैरायटीज हैं। ऐसा करने से हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं, पर्यावरण का भी इसमें ध्यान रख सकते हैं और हमारा खेती से होने वाली इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। जब हमारा लागत कम होगा तो निश्चित रूप से हमारा इनकम बढ़ेगा।
1: तो आज आपने एक बार फिर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में समय निकाल कर आए और हमारे किसान श्रोताओं को सब्जी फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन किस तरह से करनी चाहिए इस बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आप सुने थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी के साथ हुए एक भेंटवार्ता। वार्ता का विषय था सब्जियों में रोग एवं कीट प्रबंधन। इनसे भेंट करता थे तोजी ड्रेमा। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:30 होने वाले हैं। श्रोता प्रस्तुत है कार्यक्रम 4G बायो के लिए फिल्म संगीत।

तो आयशुदा कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म एक रिश्ता से उदित नारायण और अलग याग्निक की आवाजों में। इस गीत को बोल दिया है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म तुमसे मिलके रोंग नंबर से अनुराधा पोर्टवाल और कुमार सानू की आवाजों में। इस गीत को रचा है प्रवीण भरद्वाज ने और संगीत दिया है डर्बो मलिक ने।

आनंद मिलन के संगीत पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म नाम गुम जाएगा से अनुराधा पोटवार और उदित नारायण के आवाजों में।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज सियांग और अपर सियांग जिले के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के महत्व तथा इससे जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर चर्चा के लिए एक परामर्श एवं संवादात्मक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि जनजातीय अधिकारी और कर्मचारी अपने समुदायों के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं तथा लोगों की आकांक्षाओं, चिंताओं और भावनाओं को समझते हैं। उन्होंने कहा है कि इसलिए विकास को आगे बढ़ाने में उनके विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खांडू ने कहा है कि इस बैठक से न केवल परियोजना को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला बल्कि समुदायों के बीच मौजूद सवालों, चिंताओं एवं आशंकाओं पर भी विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ। बैठक में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता तथा सियांग और अपर सियांग जिले के प्रमुख अधिकारी भी शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के वुशु खिलाड़ी निमान वांगसू ने आज जापान में आयोजित 2026 एशियाई खेलों में महिलाओं की चांगक्वान फाइनल स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 16 खिलाड़ियों वाले मुकाबले में 15वां स्थान हासिल किया है। वांगसू ने कंपोनेंट ए में 4.900, कंपोनेंट बी में 2.673 और कंपोनेंट सी में 2.000 अंक प्राप्त किए, जिससे उनका कुल स्कोर 9.73 अंक रहा। हांगकांग की हुई यू लीडिया शाम ने 9.713 अंकों के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया। लोंगडिंग जिले के कानोबारी की रहने वाली निमान वांगसू अरुणाचल प्रदेश की पहली वुशु खिलाड़ी है जिन्होंने दूसरी बार एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले उनका चयन 2023 में हांगझोउ एशियाई खेलों के लिए हुआ था, लेकिन स्टेपल्ड वीजा की संबंधित समस्याओं के कारण वो प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकी थी। पशुपालन, पशु चिकित्सा एवं डेयरी विकास विभाग ने दिबांग वैली जिले के मिथुनों में फैल रहे फुट एंड माउथ डिजीज के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए उपचार और रोकथाम के उपाय तेज कर दिए हैं। विभाग की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जिले के 21 गांव प्रभावित हुए हैं।

0: और 1402 मिथुन इस बीमारी के प्रभावित हुए और इनमें से 1225 मिथुनों का उपचार किया जा रहा है जबकि 267 मिथुनों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 4 सदस्यीय रैपिड रिस्पॉन्स टीम स्थानीय पशु चिकित्सा कर्मियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों में उपचार, निगरानी और जागरूकता संबंधित गतिविधियों से सक्रिय रूप से जुटी हुई है। एफएमडी से बचाव में टीकाकरण को प्रमुख निवारक उपाय बताते हुए जिला पशुपालन एवं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दमनो रिबा ने पशुपालकों से विभाग द्वारा वर्ष में 2 बार उनके घर द्वार पर चलाए जाने वाले निःशुल्क नियमित टीकाकरण अभियान के दौरान पूरा सहयोग देने की अपील की। इस बीच विभाग दिवंग बेली में पशु धन की सुरक्षा और बीमारी को नियंत्रित करने के लिए स्थिति पर लगातार करीबी नजर रखते हुए आवश्यक कदम उठा रही है। नापोलिजो के मेडिकल कॉलोनी स्थित लिटिल ब्लॉसम डे केयर स्कूल में आज सुबह 11:30 पर भीषण आग लगी जिससे विद्यार्थियों और स्कूल अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मची। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग स्कूल भवन की छत पर लगी है जहां निर्माण कार्य के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी और बांस की सामग्री रखी गई थी। बताया गया है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। वह स्कूल की संपत्ति और वहां रखी सामग्री को हुए नुकसान की वास्तविक स्थिति की भी अभी आकलन किया जाना बाकी है। तागिन कल्चरल सोसाइटी TCS ने एक प्रतिनिधिमंडल ने आज अपने अध्यक्ष लारजी रिकिया और महासचिव तोतर दुलोम के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से उनके कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने ऑल तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन तथा सीयू नाचो लिमिकिंग तकसिंग स्टूडेंट्स यूनियन के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर अपर सुबनसिरी जिले के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों को सामने रखा। TCS की प्रमुख मांगों में से एक थी अपर सुबनसिरी जिले का विभाजन कर प्रस्तावित सिंगिक जिले का तत्काल गठन किया जाना। सोसाइटी ने कहा है कि सिंगिक जिले के गठन की मांग कई वर्षों से लंबित है और इसका उद्देश्य जिले के दूरदराज के क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच को बेहतर बनाना तथा विकास को सुगम बनाना है। इस बीच मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रतिनिधियों से आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार रखते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ परामर्श और आवश्यक पहल जरूर की जाएगी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2026 जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट में चेंजिंग द नैरेटिव विषय के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला स्वास्थ्य सोसाइटी ईस्ट सियांग द्वारा JNC पासीघाट के मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग सेल तथा इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर खुले संवाद को बढ़ावा देना तथा भावनात्मक परेशानी का सामना कर रहे लोगों के लिए सहयोगपूर्ण वातावरण को प्रोत्साहित करना था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Shubhashati Bhattacharya with regional news. Chief Minister Pema Khandu today chaired a consultative and interactive meeting with officers and officials from Siang and Upper Siang districts to discuss the proposed Siang Upper multipurpose project, its significance and various technical aspects associated with it. In a social media post, Khandu said tribal officers and officials share a close connection with their communities and understand the aspirations, concerns and sentiments of the people. He said that their insights are therefore invaluable in taking development forward. The meeting provided an opportunity not only to understand the project better, but also to reflect on the questions, concerns and apprehensions that may be present among our communities.

श्रोताओं, अभी आपने कार्यक्रम देशभक्ति गीत में फिल्म स्वदेश से एआर रमन की आवाज में एक देशभक्ति गीत सुना। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बज गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में। तो आइए श्रोता, कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं। फिल्म मरते दम तक से सुरेश वटकर, महेंद्र कपूर, शबीर कुमार और हेमलता के आवाजों में। इस गीत को बोल और संगीत दिए हैं रविंद्र जैन ने। गीत की फरमाइश की है बुलदना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सदैव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेद कुमार दामोदर, साधना पवन पटेल, अमोल मनकर, शोभताई मनकर, शलोक और दीपाली ने।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है फिल्म जुल थिप से। इस फिल्म को फिल्म के गीत को गाया है किशोर कुमार ने। गीतकार मजलू सुल्तानपुरी तथा संगीत दिया है एसटी परमन ने। गीत की फरमाइश की है पद्मटोकी स्नापा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और जनकपुरी शाहनपुर से जॉन डिकास्टो, पियर डिकास्टो, रोजी डिकास्टो और विलियस डिकास्टो ने।

आनंद बख्शी के रचे गीत पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म धर्मवीर से मोहम्मद रफी के आवाज में। इस गीत की फरमाइश की है मजनू का तिला दिल्ली से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और साता मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने।

अनुराधा पोटवाल की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। इस गीत को बोल दिए हैं समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। गीत की फरमाइश की है मुदुम तवांग से संगीत सिंह, राम सिंह यूसर से सोनम छोटन और मुंगला से कंचोटाशी और सोनम नरबुनेही।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अंतिम फरमाइश का गीत फिल्म प्यासा सावन से कमलेश अवस्थी की आवाज में। इस गीत को रचा है संतोष आनंद ने तथा संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गीत की फरमाइश की है पैगंग लहू गांव से पेमा दशी कर्मू छोटन हम ड्रेमा फुनसु वांगमू और जम्बे छोटन ने।

जिसके तहत हमने पेश की आप सभी के वसफर नशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस शुरू की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें 5:15 बजे से 5:00 बजे तक वसफ जरूर करें। हमारा वसफ नंबर है

की आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइश पर आधारित हमारे यहाँ रोमानी और याद भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी में भी अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और लवलों के साथ। ये आकाशवाणी का तारा केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पेस स्कीम 10:50 समाचार संध्या 8:45 तथा

जोश है, जुनून है, जीत का अरमान है, एशियाई खेलों में भारत की अलग पहचान है। मैदान में पसीना, आंखों में सपना, तिरंगे को ऊंचा रखना ही है अपना। नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। एशियाई खेलों के इस रोमांचक सफर में हर दिन सामने आ रही एक नई कहानी, नया संघर्ष और नई उपलब्धि। एशियाई खेल के हर अपडेट और खेल जगत की तमाम खबरों पर रहेंगी नजर। तो आइए शुरू करते हैं खेल खबरों के साथ 15 मिनट का ये सफर। एक नजर प्रमुख खेल सुर्खियों पर। एशियन गेम्स में भारतीय निशानेबाज का दमदार प्रदर्शन जारी, हिमांशु ने सिल्वर और रुद्रांश ने जीते कांस्य पदक। टीम स्पर्धाओं में भी भारत का पदक सुनिश्चित। भारत की सुजिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वुशु में रोशिबीना और आर्यन का बेहतरीन प्रदर्शन, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से उतरेंगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, फाइनल में श्रीलंका से होगा मुकाबला।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां निशानेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज कई पदक खिलाड़ियों ने जीते हैं। जापान के आईची नागोया में जारी एशियाई खेलों में आज निशानेबाजी में भारत ने 3 पदक अपने नाम कर लिए हैं। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता।
1: Bronze going to Rudraksh Patil, 230.9 in the final, and takes the bronze medal here.
2: Himanshu, and he will receive his silver medal, his first medal at the multi-sport event.
0: Rudraksh Patil ne jeet ke baad kya kuch kaha, aaiye sunte hain.
3: फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड कि कंट्री के लिए 2 मेडल ला पाया। ऑफ कोर्स थोड़ा बेटर हो सकता था और गोल्ड का हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम लोग ब्रॉन्ज एंड सिल्वर ला पाए हमारे दोनों 2 फ्लैग से पोडियम पे, तो आई एम वेरी हैप्पी। शूटिंग से ही स्टार्ट होता है मेडल, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज शूटर्स की टू ब्रिंग अ मोमेंटम फॉर द एंटायर कंटिजेंट। हम जितने मेडल्स मारेगी उतनी हमारी पूरी कंटिजेंट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेगी, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगी।
0: और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी मुकेश। मुकेश, 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल

0: ने कांस्य पदक जीत लिया है, कितना रोमांचक रहा उनका मुकाबला।
1: जी प्रशांत, दोनों निशानेबाजों ने कड़े मुकाबले के बाद पदक अपने नाम किए हैं। हिमांशु ने कुल 252.4 अंक हासिल किए, जबकि रुद्रांश ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक पर कब्जा किया है। प्रशांत, मैं आपको ये भी बताऊं कि चीन के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन शेंग लिहाओ ने 254.2 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता है।
0: मुकेश, ये तो हुई व्यक्तिगत स्पर्धाओं की बात, लेकिन टीम इवेंट में क्या कुछ रहा निशानेबाजों का प्रदर्शन आज?
1: प्रशांत, टीम स्पर्धा में निशानेबाजों ने रजत पदक हासिल किया है। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की भारतीय पुरुष टीम ने भारत के लिए पदक जीता। रुद्रांश ने क्वालिफिकेशन में 631.8 अंक बनाकर शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि हिमांशु ने 630 के स्कोर के साथ सातवां और पार्थ ने 628.3 के स्कोर के साथ कुल 1890.1 अंक हासिल किए। 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में ये रुद्रांश का दूसरा एशियाई खेल पदक था। इससे पहले उन्होंने हांगचो में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। चीन ने 1899 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता और दक्षिण कोरिया ने 1884.2 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: जी मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और इससे पहले कल एलाबेनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक भी हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम कर लिए हैं, जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब बात करते हैं मार्शल आर्ट्स पर। भारत की सूचिका तारियाल ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सूचिका ने पारंपरिक 60 किलोग्राम इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया।
2: 36 वर्षीय सूचिका ने नया इतिहास रचते हुए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश को पहला पदक दिलाया। सूचिका और सिंगापुर की हुई तियो के बीच 60 किलो वर्ग का बेहद संघर्षपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा। ओवर टाइम तक चले इस मुकाबले का कोई नतीजा नहीं आया। इसके बाद सुबह के वजन के नियम के आधार पर सूचिका को सिर्फ 700 ग्राम के अंतर से मुकाबला हार गई और उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। इससे पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने मंगोलिया की अल्ता चिमेग बेलगमा को हराकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया था। कभी जूडो की खिलाड़ी रही सूचिका ने वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक का मुकाबला खेला था। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: जी पहला पदक अपने नाम किया, और आइए सुनते हैं सूचिका ने क्या कहा पदक जीतने के बाद।
3: जान से भी बढ़कर है, क्योंकि मैंने हर जगह ट्राई किया, वहां से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बट स्टिल यहाँ से मुझे एक मेडल मिला है तो मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बचपन से मैं बहुत ट्राई करते आ रहा हूँ।
0: और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने एशियन गेम्स का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया है। एक तरफा मुकाबले में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: लक्ष्य सेन ने भारत को मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत दिलाई। उन्होंने बांग्लादेश के ऐमान इब्त जमन पर शुरू से ही दबाव बनाए रखा। लक्ष्य ने पहले गेम को एक तरफा अंदाज में 21-4 के बड़े अंतर से अपने नाम किया। लक्ष्य अपनी इसी लय को दूसरे गेम में भी बरकरार रखने में सफल रहे। उन्होंने दूसरे गेम को 21-12 से अपने नाम करते हुए मुकाबले में भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। लक्ष्य के जबरदस्त स्मैश का जमान के पास कोई जवाब नजर नहीं आया। आयुष शेट्टी ने दूसरे मैच में कमाल का खेल दिखाया। आयुष बांग्लादेश के गौरव सिंघा पर पूरी तरह से हावी नजर आए और पहले गेम को 21-4 से जीता। इसके बाद दूसरे गेम में भी आयुष का दबदबा कायम रहा और उन्होंने 21-13 से गेम जीतकर भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया। तीसरे मैच में किदांबी श्रीकांत का प्रदर्शन भी बेमिसाल रहा। उन्होंने बांग्लादेश के जुमार अल अमीन को शिकस्त देते हुए भारत की तीसरी जीत सुनिश्चित की। हालांकि श्रीकांत को पहले गेम में जीत के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वह गेम को 21-15 से अपने नाम करने में सफल रहे। दूसरे गेम में श्रीकांत ने जुमार को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और 21-10 से गेम को जीतकर भारत की जीत पर मुहर लगा दी। इस जीत के

0: पक्की कर ली है। क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला कल जापान से होगा। भारतीय पुरुष टीम अगर जीत दर्ज करने में सफल रहती है तो उनका मेडल पक्का हो जाएगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर वुशु में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है भारतीय खिलाड़ियों का। भारतीय वुशु खिलाड़ी आर्यन और रोशिबीना देवी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आर्यन ने पुरुषों के 56 किलोग्राम प्री क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान की साफी शहजादा को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि दो बार की एशियन गेम्स मेडलिस्ट रोशिबीना ने महिलाओं के 60 किलोग्राम फाइनल में बांग्लादेश की शिखा खातून को पॉइंट्स के अंतर से मात देकर अंतिम आठ में जगह बनाई। अब दोनों ही खिलाड़ी पदक सुनिश्चित करने से बस एक कदम दूर हैं। आर्यन और रोशिबीना कल क्वार्टर फाइनल में पदक और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। दो बार की एशियन गेम्स मेडलिस्ट रोशिबीना ने 2023 हांगझोउ गेम्स में सिल्वर और 2018 जकार्ता गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। और अब बात हॉकी पर। सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। हॉकी इंडिया ने आज भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी गोलकीपर सविता की सराहना की। इस खास उपलब्धि पर हॉकी इंडिया ने कहा कि ये सविता के करीब 2 दशकों के अनुशासन, मेहनत और बेहतरीन नेतृत्व का नतीजा है। उनके शानदार योगदान को सम्मान देने के लिए हॉकी इंडिया ने उन्हें 10 लाख का नकद इनाम देने की घोषणा की है। उधर भारतीय महिला हॉकी टीम का दमदार प्रदर्शन जारी है। पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराने के बाद टीम ने दूसरे मैच में इंडोनेशिया को 17-1 से शिकस्त दी। भारत की ओर से दीपिका, ऋतुजा पिसाल और नवनीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोलों की अपनी हैट्रिक पूरी की। वहीं सुनलिता टोप्पो और साक्षी राणा ने 2-2 गोल किए। कप्तान सलीमा टेटे और इशिका ने भी 1-1 गोल किया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने पूल बी में पहला स्थान हासिल कर लिया है। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। महिला क्रिकेट एशियन गेम्स में कल भारतीय टीम स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। फाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशेष, अब तक भारतीय टीम का कैसा सफर रहा है और कल होने वाले मुकाबले से क्या कुछ उम्मीदें होंगी, क्योंकि लगातार अच्छा खेल करती आ रही है भारतीय खिलाड़ी?
2: सफर की बात करें प्रशांत, तो भारतीय टीम एशिया कप जीत कर आई है। ऐसे में पदक की उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं भारतीय टीम से स्वर्ण पदक की, क्योंकि भारत ने एशियन गेम्स में अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है। एशिया कप में भी भारत का जो फाइनल था वो श्रीलंका से हुआ था, जहां भारत ने अपने ही डोमिनेटिंग अंदाज में 72 रन से जीत दर्ज करके खिताब अपने नाम किया था। वैसी ही कुछ उम्मीदें भारतीय टीम से कल होंगी। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, श्रीचरणी, क्रांति गौड़ के साथ साथ पूरी टीम को एक यूनिट के साथ खेलना होगा और अपने स्वर्ण पदक का जो खिताब है उसको जीतना होगा।
1: विशेष, भारतीय पुरुष टीम भी कल प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे, किनसे होगा मुकाबला?
2: भारतीय पुरुष टीम का कल मुकाबला जापान से होगा। ये एक फ्रेंडली मैच है और इसके बाद भारतीय टीम जो है एशियन गेम्स में अपना सफर शुरू करेगी 28 सितंबर से, जहां पहले ही अपनी रैंकिंग के आधार पर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। और साथ ही साथ भारत भी स्वर्ण पदक पिछले संस्करण में जीती थी, तो इस बार भी उनसे काफी उम्मीदें होंगी कि वो आए और अपना स्वर्ण पदक डिफेंड करें।
1: विशेष, पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, भारत डिफेंडिंग चैंपियन है और कल भारत फाइनल मुकाबला खेलने भी उतरेगी, टाइटल को डिफेंड करने के लिए उतरेगी। लेकिन जो पुरुष टीम है, कौन कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं जो टाइटल को डिफेंड करने के लिए मुकाबला करेंगे?
2: अगर पुरुष टीम की बात करें तो पुरुष टीम जो है 2026 में विश्व कप जीती है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, कमाल की ओपनिंग जोड़ी है। उसके बाद तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में टीम को संभालते नजर आएंगे और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर सभी अपनी भूमिका निभाएंगे और भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते नजर।
1: और यंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी ने भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और उन पर भी विशेष निगाहें होंगी। और विशेष, कल एशियन गेम्स में क्रिकेट के अलावा कौन कौन से प्रमुख खेलों पर नजरें होंगी?
2: कल के मुकाबलों की अगर बात करें प्रशांत, तो बैडमिंटन में भारतीय पुरुष और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगी। दोनों ही टीमें कल जापान से भिड़ेंगी।
1: बैडमिंटन में किन खिलाड़ियों पर नजर रही होंगी विशेष?
2: बैडमिंटन में काफी उम्मीदें होंगी पुरुष टीम की अगर बात करें तो लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, एच एस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत। वहीं महिला टीम में तन्वी शर्मा, उन्नति हुड्डा, पीवी सिंधु,

0: जो है वो भारतीय टीम को जीत दिलाने का प्रयास करती नजर आएंगी।
1: और कौन कौन से मुख्य खेल हैं जो कल होंगे और जिन पर भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होंगी?
0: कुश्ती में महिलाओं के 51 किलोग्राम में साक्षी और पुरुषों के 55 किलोग्राम में जादूमणि सिंह भारत की ओर से चुनौती पेश करेंगे। महिला क्रिकेट का जैसा बताया कि गोल्ड मेडल मैच खेला जाएगा। हॉकी में भी भारत की पुरुष टीम कल श्रीलंका से मुकाबला करेगी। यह मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा। कबड्डी में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला कोरिया से होगा। वहीं सेपक टकरा में भारतीय पुरुष टीम मलेशिया से प्रतिस्पर्धा करेगी। शूटिंग में कल 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम का फाइनल होना है। स्कीट और अन्य मुकाबले भी खेले जाएंगे। वहीं अगर टेबल टेनिस की बात करें प्रशांत, तो महिला टीम कल थाईलैंड से राउंड 1 में मुकाबला करेगी। वहीं पुरुष टीम कोरिया का सामना करेगी।
1: विशेष कल ई स्पोर्ट्स में भारत के सामने क्या कुछ चुनौती होंगी
0: प्रशांत? कल ई स्पोर्ट्स में भारत का एक इवेंट है जिसमें कल उज्बेकिस्तान से भारत की टीम फुटबॉल मैच खेलेगी।
1: और विशेष श्रोताओं को आप भारत की स्थिति भी बता दें कि एशियन गेम्स में भारत की इस पोजीशन पर कितने पदक है भारत के पास?
0: एशियन गेम्स की अंक तालिका में भारतीय टीम अभी 12वें स्थान पर है। 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ कुल 6 पदक भारतीय टीम ने जीते हैं।
1: और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि आज भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सुनील कुमार की कप्तानी में धमाकेदार जीत दर्ज की। भारत ने मेजबान जापान को एक तरफा मुकाबले में 49-23 से हराया। वहीं तैराकी में श्रीहरि नटराज ने आज पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और टेबल टेनिस ने एशियन गेम्स का आगाज शानदार जीत के साथ किया है। सुतार्थी मुखर्जी, सिंड्रेला दास और श्रेजा अकुला की तिकड़ी ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए मुकाबले को 3-0 से अपने नाम कर लिया। और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
3: This strategic partnership.
4: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
2: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
3: It is an important moment for our businesses.
4: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 1,91,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
3: मीट इंडिया स्केल।

0: growing demand.
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
2: सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
4: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने

0: दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और इसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया।

0: मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India-New Zealand free trade agreement to come into force from 20th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says it will open new employment opportunities in MSMEs and benefit farmers. India and Canada agree to fast-track negotiations for comprehensive economic partnership agreement. Next round of talks to begin on 5th of next month. Defence Ministry signs contract worth 586 crore rupees with a Pune-based private company to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks. NHAI releases new guidelines to boost road safety and efficiency across national highways. Vladimir Putin's United Russia Party retains majority in parliament. And at Asian Games in Japan, India wins 3 medals in shooting at Aichi Nagoya. Badminton men's team reaches quarterfinals, beating Bangladesh. And now the news in detail. India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
1: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities.
2: It is an important moment for our businesses, farmers, exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement. It facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India. It also establishes an agriculture productivity partnership whereby New Zealand's technology will meet India's scale and growing demand.

0: instantly at no charge to the person paying. The account aggregator framework lets a citizen share their own financial record with a lender or insurer with consent. Addressing the Global Fintech Fest 2026 this month in Mumbai, Prime Minister Narendra Modi highlighted UPI's remarkable 10-year journey and its growing global reach.
1: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही यूपीआई से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और साथियों, भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
0: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, शरण्याम सिंह, अ रेजिडेंट ऑफ पटना, सेड ही यूज्ड टू चेक इफ ही हैड एनफ कैश इन हिज वॉलेट बिफोर स्टेपिंग आउट, बट नाउ ही इजीली पेज फॉर टी, ग्रोसरीज और मील्स इन सेकंड यूजिंग यूपीआई.
2: There was a time when stepping out meant checking whether I